सत्य जान ला सब तेरे बस तेरा कर पला तेरे घर आनंद बदाय तुझ कर मन मदते जा सर्व कला भर।

ताती वाव न लग गई पार ब्रह्म शरणाई। चौगिर्द हमारे राम कार दुख लग न पाई। सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई।

जय गुरु गुरु निवास अंतर जामे सच्चे पातशाह जी महाराज धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप जी दे पावन पवित्र स्थान तक सचखंड दरबार दियां हाजरियां भरदे होए कीर्तन दे सत्कार जो संता और बेंत माया हाजिर हो जिस खजाने विच माया हाजिर कीती सो सो खजाने भरपूर करना नाम दान गुर सिखे वाला जन वसना देह रखा बख्शनिया सामन सा संपूर्ण करनी यात्रा सफल करनी।

जय ताप न साप न शोक सुखंग, जय रोग न शोक न भोग भुयंग, जय खेद न पेद न छेद छयंग, जय जात न पात न माद पितंग, जय रचियंग छत्री छत्र छितंग, जय राग न रेख न रोग बणंग, जय द्वैख न ताग न तोख गणंग, जय अंड ते ब्रह्मंड रचियो, दस चार करी नवखंड सचियो, रज तामस तेज तेज कियो, अनुपदे आप प्रचंड लियो, श्रेय सिंधर बिंध नगिंद नगंग, श्रेय जच गंधर्व फणंत भुजंग, रच देव देव पेव नरंग, नरपाल नरपाल कराल त्रिगंग, कई कीट पतंग भुजंग नरंग, रच अंडज सेतज उत भुजंग, किए देव अदेव सराध पतंगन, खंड प्रताप प्रचंड गतंग, प्रभ जात ना पात ना ज्योत जुतंग, जय तात न मात न प्रात सुतंग, जय रोग न सोग न भोग भुवंग, जय जंपह किन्नर जच भुजंग, नर नार नपुंसक जय किए गण किन्नर जच भुजंग, दिए गज बाजर तादिक पाद गणंग, भव भूत भविक भवान तोअंग, जय अंडज जेत जेर रजंग, रच भूम आकाश पताल जलंग, रज पावक पवन प्रचंड बली, बन जास की ओ फल फूल कली, पू मेरे आकाश निवास छितंग, रच रोज एकादश चंद्र प्रतंग, दुत चंद दिनी से दीप दई, जय पावक पवन प्रचंड मई, जय खंड अखंड प्रचंड किए, जय छत्र उपाय छपाए दिए, जय लोग चतुर्दश चार रचे, नर गंधर्व देव।

आगे है न जात है न पात है न मंत्र है न मित्र है न तात है न मात है न अंग है न रंग है न संग है न साथ है न दुख है न दाग है न द्वैग है न देह है न सिंह है न स्यार है न राहु है न रंक है न मान है न मौत है न साग है न संक है न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चूर है न साहु है न साह को कुमार है न नेह है न गेह है न देह को प्रणाव है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न यंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न यंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है अजन्म है अपेख है न तात है न मात है अख्याल अखंड रूप है अछेद है अभेद है न रंग है न भूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अपंज है करीम है कुरान है अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न रोग है न सोग है न भेद है न पंड है न अंग है न रंग है न संग है न साथ है प्रिया है पवित्र है पुनीत है परमाथ है न सीत है न सोच है न क्रांति।

न द्वैक है, न पीक है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है, न पात है, न चित्र चिन्ह वर्ण है, बेअंत है, अनंत तीज जानिए, अपूम अपिज है, सदा छिज तेज मानिया, न आद है, न ब्याद है, अगाध रूप लेखिया, अदोख है, अदाग है, अच्छा प्रताप पेखिया, न कर्म है, न परम है, न धर्म को प्रभाव है, न जंत्र है, न तंत्र है, न मंत्र को रलाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र को स्वरूप है, अपंग है, अनंग है, अगंज

है, न रूप रेख रार है, न हाव है, न पाव है, न दाव को प्रकार है। गजाधपि नराधपि करंत शिव है सदा, सितुष्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा। अगस्त याद जीवटि तपस्पति विशेखिया, बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पेखिया। अगाध याद देव की अनाद पात मानिया, न जात पात मंत्र मित्र सत्र स्नेह जानिया। सदीव सर्वलोक के कृपाल ख्याल में रहा, तुरंत द्रोह देख के अनंत।

दुष्ट गंजन सत्र पंजन परम पुरख परमाथ दुष्ट हरता सृष्ट करता जगत मैं जयगाथ भूत भब भविख भवान प्रमाण देव अगंज आद अंत अनाद श्रीपत परम पुरख अपंज धर्म के अनकर्म जीतक कीन तौन पसार देव अदेव गंधर्व किन्नर मच कछ अपार भूमकाश जले थले मैं मानिया जहना दुष्ट हरता पुष्ट करता सृष्ट हरता काम दुष्ट हरना सृष्ट करना दयाल लाल गोबिंद मित्र पालक सत्र कालक दीन दयाल मुकंद अगौ डंडन दुष्ट खंडन काल हूं के काल दुष्ट हरणंग पुष्ट करणंग सर्व के प्रतपाल सर्वकर्ता सर्वहर्ता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज पाम सर्व भुगता सर्व जुगता सर्व कर्म प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन सर्व सिमरतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार दुष्ट हरता विश्वभरता आदि रूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि देव अखंड भूमिका जले थले मह जप जाप अमंड सृष्ट चार विचार जीते जानिया सविचार आदि देव अपार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञान

निकंदन पृष्ठ विनाशन मृत मथे कावरू कुमारे अधम उधारे नरक निवारे आद कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंघारोहण बितल तले जय जय होसी सब ठौर निवासन पाए पतास अकाल आकाश अनले संकटी निवारण अधम उदाहरण तेज प्रकार खण तुंद तबे दुख दुख दहंती ज्वाल जयंती आद नाद गाद अच्छी शुद्धता समर्पण तर्क पितरकन तपत प्रतापन जपत जीवे जय जय होसी शस्त्र प्रकार खण आद नील अगाद अभे चंचला चखंगी अलक भुजंगी तुंद तुरंगण तिछ सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अधम उधारे तूर पुजे दामनी दमंके के हर लंके याद अतंके क्रूर कथे जय जय हो सीरक तासुर खंडन सोम्र चक्रत ने सोम्भ मथे बारज बिलोचन ब्रतन बिमोचन सोच बिसोचन कौच कसे दामनी प्रहासे सुख सरनासे सुब्रत सुबासे दुष्ट ग्रसे चंचला प्रंगी बेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन याद अनाद अगाध उर्धंग घंटका बिराज रुण जुण बाज ब्रह्म भाज सुन सुरंग कोकल सुन लाज किल विग भाज सुख उपराज मद उरंग दुर्जन दल दज मन तन रिज सभ न भज रोह रणंग जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन चंड चक्र तन आद गुरंग चाचरी प्रजोधन दुष्ट विरोधन रोस अरोधन क्रूर ब्रते धूमराज विधुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विधुंस

करीम कादर कृपाल अद्वै अभूत अनभय दयाल दाता तुरंत दुख दोग रहत जह नेत नेत सब वेद कहत कई ऊच नीच कीनो बनाव सब वार पार जा को प्रभाओ सब जीव जंत जानत जाहे मन मूड क्यों ना सेवंत ताहे कई मूड पंत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरज सेवंत कई पलट सूरज सिजदा कराए प्रभु रूप द्वै कै लखाए अन छिज तेज अन भय प्रकाश दाता तुरंत अद्वै अनास सब रोग सोग ते रहत रूप अन भय अकाल अच्छा।

एक सार अच्छा स्वरूप अबचल अपार जानी न जाय जह रूप रेख कह बास तास कह कौन पीख कह नाम तास है कवन जा जय सत्र मित्र नहीं पुत्र प्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चिन्ह नहीं रंग रूप जय खेद पीद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल और धंग रहत सिद्धंग स्वरूप

देव अदेव खपे अंग मेव न पेव लखियो भ्रम सियो भ्रमाए वेद पुराण कदेव कुरान हसीब थके कर हाथ न आए पूरन प्रेम प्रभाव बिना पत स्यो कैन श्री पद्मा पद पाए आद अनंत अगाध अद्वैग सभूत भविक भवान अभय है अंत विहीन अनातमया पदाग अदोख अछिद्र अछय है लोगन के करता हरता जलमय थलमय भरता प्रभ है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्री पद्मापद।

आदर के चलैया छित छत्र के धरैया छत्र धारियो के छलैया महासतरन के साल है। दान के दवैया महामान के बढ़ैया अवसान के दवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया अविरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के।

हाथी की पुकार पल पाछे पहुंचत ताए चीटी की चिंगार पहले ही सुनियत है। किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख चार किते कृष्णा अवतार किते राम कहियत है। किते ससरासी किते सूरज प्रकाशी किते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। किते महादीन किते व्यासे प्रवीण किते कुमिर कुलीन किते जच कहियत है। करते हैं विचार पैना पूरन को पावे पार ताहि ते अपार निराधार लहियत है। पूरन अवतार निराधार है न पारावार पाई है न पार पै अपार कै बखानिया अद्वै विनाशी परन पूरन प्रकाशी महारूप हूं के राशि है अनासी कह कै मानिया। जंत्र हुना जात जा की पाप हुना मायता की पूरन प्रभागी सो छटा के अनमानिया। तेज हूं को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है के निजंत्र कह के जानिया। तेज हूं को तार है के राजसी को सार है के शुद्धता को कार है के सिद्धता की सार है। कामना की कान है के साधना की शान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूं के रूप है कुमत को प्रहार है। दीनन को दाता है गनीमन को गारक है साधन को रक्षक है गुणन को पहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छा अविनाशी है। काम को कुनिंदा है के खूबी को देहंदा है गनीमन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है। काल हूं के काल है के सत्रन के साल है के मित्रन को पोगत है के वृद्धता की बासी है। जोग हूं को जंत्र है के तेज हूं को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण

को देव है निरंजन अपेव है अदेवन को देव है के शुद्धता को सर है जान को पचैया है ईमान को दिवैया है जम जाल को कटैया है के कामना को कर है तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महिपन को मंड है के स्त्री है ना नर है विश्व को पर्ण है के अपदा को हरण है के सुख को कारण है के तेज को प्रकाशी है पाई है न पार पार अवार हूं को पार जा को कीजत विचार सो विचार को निवास है हिंगला हिमालय गावे हबसी हलबी त्यावे पूर्वी न पार पावे असत अनास है देवन को देव महादेव हूं के देव है निरंजन अपेव नाथ अद्व अविनाश है अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के देवन के देव महादेव हूं के देवनाथ भूम के पुजैया है मोहिया महाबाल के राजन के राजा महासाज हूं के साजा महाजोग हूं को जोग है तरैया द्रुम छाल के कामले कामना के कार है के बुद्धता को हार है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरावत छाज कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छब कालिंद्री के कूल के हंसनी सी सिहारू हीरा सी हुसैनाबाद गंगा कैसी तहार चली साधु सिंध रूल की पारा सी पलाऊगढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरा सी सुरंगाबाद नीके रही झूल के चंपा सी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल की फटक सी कैलाश कमाऊगढ़ काशीपुर सीसा सी सुरंगाबाद निकै सोही अत है हिमा सी हिमालय हर हार सी हलप्पा नेर हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रा गिर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंग तहार बकान सी बलिंदाबाद कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासीस के दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गाईयत है पखरी कंधारी गोर गखरी गर्दे जाचारी पवन के आहारी तेरो

जाहो करे ना हुई बलहारी कुदत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहा जात मैं जोत जोत मैं जाता कलकला पर पूरे या तू सच्चा सा इस बस वाले हो जिनकी तीसो फार पया।

माख तरे नहीं आनियो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मानियो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जानियो। श्री अस पान कृपा तुम री कर मैं ना कहो सब तोहे

रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना, अंगीकार ओ करे तेरा कार्य सब सवारना, सब ना गला समरथ स्वामी सो क्या मनो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाही घर तेरे, घर ता तेरे सब किछ है जिस दे सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द घनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे, साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया कर शान सुख मन आय वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान किता गुरु विटों जिस दिया ए वडियाइया, कह नानक सुनहु संतो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित घर सभागै, घर सभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया, पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, दुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे, कह नानक तह सुख हुआ तित घर अनहद वाजे, आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संता पुतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भय सरसे।

चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुक्ते स्वयं भगवं सर्वदा सर्व युगते तुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगय भगवं प्रभुते देवते गोपते प्रसवे गंगा पतेना गुरु गोविंद सिंह जी श्री अकाल पुरख जी सहाय दरबार में तेरो दरबारा सच खंड वसे निरंकार।

विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फ्रह जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडान विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लग है प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भूख विस्माद भोग विस्माद विस्माद

भवचिंद फिरा सिर भार, भवच राजा धर्म दुआर, भव सूरज भव चंद, कह करोड़ी चलत न अंत।